0: आजा करण, हो गया रिकॉर्ड।
1: Easy Web Radio Thüringen, die beste Rockmusik.